0: ये तो हुए सुर, अब इन पे बिठाएं बोल। हाँ, तेरे नैना,
1: तेरे नैना, तेरे।
0: तुम ऐसा करो, ये गाओ मे